हम देखा चाडू बियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अबर काज तेरा कितना काम मैल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग पव जल तरन कै जन्म ब्रथा जात रंग माया कह राओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो वाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोष्ट सब तुम काबहो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करै सब बैरन कौ आज संगरै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अबर न त्याऊं जो बर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे भर आए मरण काल का त्रास निवर आए हू जो सदा हमारे पछा सरियस तुझू करे हो रक्षा राख लेह मोह रख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो कटकट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देही अपार जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जा को पेव न पावत भेदा ताको कार्य पहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो है तेती तुमरा लखा न जाय पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा अंडज जेर जसे तिज कीनी पुत पुज खान बहोर रच दीनी कहूं भूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संगरो, दोष जेते उठ बतुत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे आस तुज तब शरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जबन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नह आए हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दोष्ट अरिष्ट ठरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहिन हरिहो, ताके ताप तन कमो हरिहो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दोष्ट शाह स्व सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल

बूझे सो सहज समाना। जो एव बूझे तो भगत जी ने बड़ी कृपा की, आख्या परेशानियां तो बचण का तरीका मैं तुहानू दस देवां। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए। इतने ते इतनी परेशानी हो गई जे किसी आखो भी घड़ी दो घड़ी बह के विचार, मेरे को टाइम नहीं है जी, ये वेलिया का काम है। लोग दसो फिर परेशानियां ते तुसी ते मैं आप झेल रहे। जदों गुरु की गल सुननी नहीं, विचारनी नहीं, उसके ते अमल ही नहीं करना। भाई जे कोई बीमार मंजे से पिया पिया किसी दोष चाहिए दई जाए, डॉक्टर को तो जाना ही पवेगा ना, दवाई तो लियानी पवेगी, दवाई खानी पवेगी, परहेज करना पवेगा। असि ना जी सू परहेज करनी ना कहो, और जो मन मर्जी करिए नहीं, नहीं। भाई गुरु की गल से सुन के मननी पवे। तो भगत जी ने कृपा की, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माही। ये जो दुनिया शहर बेना, ये दुनिया नू सच्ची ना समझ, ये जादूगरी का तमाशा है, ये सुपने का खेल है, ये मैजिक शो है। दस केरी ना है, ये किसे दे नाल निभण वाली नहीं। पर हम असी की करें, दोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बात भकाए। दरोग का मतलब है मोबाइल का झूठिया गल्लां पढ़ पढ़ बड़े खुश हो गए। मैनू इन्नी विद्या आती है, मैं इनिया डिग्रिया प्राप्त कर लिया, और उन्होंने पढ़ पढ़ के असी खुशी हो रहे हैं। बेखबर बात भकाए। आ थोड़े दिन होए दास, मैं नाम किरण फरीदकोट गया, मैं देखिए कुछ सज्जन चार अखर पढ़ लेंगे, और फिर दूजे को टोकना अपना खास फर्ज समझ लेंगे, हर एक टोकी जाओ टोकी जाओ टोकी। पर उन्हें क ज्ञान नाल मसला हल नहीं होता। गुरबाणी का ज्ञान ते ध्यान नाल समझना ते अमल करना पवेगा। जे असी अमल नहीं करांगे ते एवें बहस मबहसियां विच पए होए तुरंत ज्ञान लड़ाई जावांगे। पर भगत जी कहते हैं, मैं ते देख ले लोग यही कर रहे हैं, दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाए। बाद का मतलब होंगे आपस में बहस मबहसा कर, शास्त्रार्थ करने, दलील देनिया, उक्तियां जुगतियां ना अगले नू हरा देना, बोलन ना देना। भगत जी के समय यह गल आम प्रचलित सी। एक पंडित जी दूजे पंडित जी नाल शास्त्रार्थ करते सन, जिहड़ा पंडित हार जाए जितण वाला उहदे सारे ग्रंथ लै लैंदा सी, ते गड्डियां ते लद के ऊठा ते लद के फिर अगले पासे तुर पैंदा, फिर अगले सवाए अहंकार वधाउण तो होर कुछ भी। दरोग पर खुशी होए, बेखबर बाद बकाए। हक सच खालक खलक में आने। ओ परमात्मा जो हक है, जो सच है, जिन्हों बाबे नानक ने आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, आद पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर। गुरु पातशाह ने ते हर गल समझाई। भगत कबीर जी कह रहे हैं, हक सच खालक। खालक का मतलब है खलकत नू बनाउन वाला, ते खलक का मतलब है खलकत। इसलिए भगत कबीर जी ने कहा, लोगा परम न भूलो पाई, लोगा परम न भूलो पाई। इतने परम दे मम्मे नू सहारी है, परम बिच ना भूलो, परम का शिकार ना होवो। हे लोको, खालक खलक खलक मैं खालक, खालक खलक खलक मैं खालक। जो बाबे नानक जी ने कहा अकाल मूर्त,
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨੇ ਅਰ ਬਰਨ ਦਾ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਣ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਲੇਖ ਭੇਗ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਸੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਂਚਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਮਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ,

जिसके चानन सब में चानन होए, जिसके चानन सब में चानन होए, जिसके चानन। पर जोत की समझ कदों ते किवें आवेगी? गुरसाखी जोत प्रगट होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जिस दिन गुरु के बचना दृढ़ अरादे नाल असी पका लिया फिर की होवेगा? जहां जहां पेखो ता हजूर दूर कतो न जाई, रब रहा सरबत्र में मन सदा ध्याई। लो अखीर विच पातशाह कहंदे ने, भगत जी का फरमान है, अल्लाह पाखों पाक है। अल्लाह परमेश्वर के नाम लई मुसलमान वीर ये अखर आम तौर पर बनते, पर साडे सिख विद्वान अल्लाह नूं अल्लो भी पढ़ी जाते, अल्लाह भी पढ़ी जाते। बिल्कुल गलत है, कदे किसी मुसलमान के मूँह तुसीं अल्लाह नहीं सुनिया, अल्लाह नहीं सुनिया। वो जिहड़ियां मात्रावां ने वो तो सिर्फ अर्थां वास्ते ने। शब्द है अल्लाह पाकं पाक है, वो तो महापवित्र तो पवित्र है। शक करूं जे दूसर होए, आख्या मैं शक ते तां करां जे कोई दूसरा होवे, उहदे वर्गा दूजा ते कोई है ही नहीं। इसलिए गुरबाणी कहिंदी गुरसिखो भरमां विच ना पवो, तुद बिन दूजा ना ही कोए, तू करतार करें तो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। लौखीर विच भगत जी कहंदे ने, कबीर कर्म करीम का ओ करे जाने सोए। कबीर जी का फरमान है कर्म करीम का। कर्म का मतलब है बख्शिश, करीम का मतलब है बख्शिश करने वाला। वो जिन्हां उत्ते वाहिगुरू कृपा कर दिंदा ते उन्हां नूं समझ आ जाती कि जो वो करदा है वो हुंदा है, फिर ओ करे जाने सोए। यही गल गुरु नानक पातशाह ने पहली पौड़ी भी सानू समझाई। किन्ने असी जपजी साहब पढ़ते, तुझे आखो कि सारे ही पढ़ते हैं। अरे फिर पहली पौड़ी ध्यान ना पढ़ लो, किव सचियारा होई है, किव सचियारा होई है, किव सचियारा, किव कूड़े टुटे पाल, किव कूड़े टुटे पाल, किव कूड़े

कहावे। जो गुरु का वचन मन लवे, आत्म आत्म दो पाठ आउंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, एक आड़े नु कन्ना तत्ता मम्मा मुक्ता, जिथे मम्मा मुक्ता आ जावे ना उथे आत्म दा अर्थ है मन। जिथे मम्मे नु कोई लान प्यारी औंकड़ लग जावे उथे आत्म दा अर्थ है आत्मा। जिथे मम्मा मुक्ता आ जावे गुरु ग्रंथ साहिब विच उथे आत्म दा अर्थ करने मन। आत्म जिने सगल वस्ता कह जाका सतगुर पूर, इथे मम्मा मुक्ता है। जीवन मुक्त सिख ने होने, जीउंदे ने मुक्त किवें होने, अपने सतगुर दी आग्या नू हिरदे विच वसा लै। आत्म हितावे मन विच वसा लै। जिस सिख दे मन विच गुरु दा हुक्म वसिया होए, मेरे गुरु अर्जन देव जी कहंदे ओ जीउंदा ही मुक्त है। ये सचखंड निवास बख्शी भाई, ते गुरु नानक ने एवें रस्ता लिखे सचखंड दा। जे अरदासा नाल सचखंड मिलदा हुंदा है तां बाबा नानक फिर सड़क कानून दसदा तुहानू, जे सचखंड जाणे तां पहला पड़ाए धर्म खंड। धर्मी बनो, मर्यादा विच आओ। जदों तू मर्यादा विच धर्मी बन गए ना, फिर तेनू ज्ञान की प्राप्ति होवेगी। मर्यादा तो बिना ज्ञान नहीं आना गुरसिख प्यारियो। जद ज्ञान की प्राप्ति होगी फिर तेनू पता लगूगा कि जैसे जलते बुद्ध बदा उपजे बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत, मत के जा पैसा आवे के ना आवे राम। ए है ज्ञान, अपने आप का पता लगना मैं की है, बस ये ज्ञान है सब तो बड़ा। जब तेनू पता लगे ते ही कख नहीं, ये तो मिनटा दी खेड है। फिर तू पुजेगा शर्म खंड। शर्म खंड है बैराग दा खंड। फिर मन बैरागी बनूगा। जब तेनू आ गया बैराग, फिर होवेगी गुरु दी कृपा कर्म खंड। कर्म दा अर्थ है बख्शिश रहमत। उदो होगी वाहिगुरु दी कृपा कर्म खंड। जदों ओदी कृपा होगी ते फिर पुजेगा सच खंड। ये रस्ता है सचखंड जाने का। और मैं एक बेनती कर जावां, ये जेड़े चढ़ाई करन तो बाद आपां अरदासां करदे ना कि चरणा नाल जोड़ लै सचखंड निवास बख्श, इहदा भी इक कारण है। जानदे तां तुसी हैं पर किसे नूं दसदे नहीं, तुसी गुप्त रखदे हो। ओ जद मरे तो बाद अरदास करदे आ, गल इक्को हुंदी है, पता आपां नूं हुंदा है कि साडियां अरदासां उत्थे नहीं जाणियां। क्यों नहीं जानिया? उथे सचे ही सच निबड़े, चुन वक कढ़े जज मालिया। उथे ता बह लेखा कर समझाया कि तुहाडी अरदास उथे की करेगी। उथे मेरे सतगुर ने कह दिता चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर। उथे

0: खुला तरट हो ठोर समेटा
1: जू कर मेरे चीखड़े जू कर मेरे चीखड़े
0: हीरा लाल अमोल पलेटा हीरा लाल अमोल पलेटा भगत जाना।

प्यास न जाए हो सकते इत्र हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए बहुत न हर पिए हर रस बहुत न तृष्णा लागे पाइए सदगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे या हर वसे माना होर अन रस सब विसरे।

वह वह साहिब सच है अमृत जाका नाम जिन सेविया तिन फल पाया हाँ तिन बलिहारे जानो वह वह

0: दयाल स्याह, हर हर नाम दयाल स्याह, हर हर नाम दयाल स्याह, हर हर नाम दयाल स्याह, हर हर नाम दयाल स्याह, हर के रंग सदा गुण गाह,
1: हर के रंग सदा गुण गाह,
0: हर के रंग सदा गुण गाह,
1: हर के रंग सदा गुण गाह।

हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर

हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एको नाम हुक्म है जब भगत करे संत मंडली तेन मिल हर गांव करू नमस्कार भगत जन धूड़ मुख लाऊं सब संगत

को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जपला हर नानक को जप

कौन बली रे ऐसो कौन बली रे जिन गुण मिल मारे पंख सूर दीर जिन गुण मिल मारे पंख सूर दीर जिन मिल मारे

संग संग ले जड़ियो शिकार मिर्ग पकड़ी बिन घोर हथियार बगैर घोड़े ते हथियारा तू मिर्ग पकड़े संत संग ने चढ़ियो शिकार इहो है राखी नो दान नानक कह कर केवल नाम ऐसा की सतसंग सहर मन में

राजी नाती बेटी बहु पहाट कर नहीं हर हर पीजे राम राजे हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं पीजे नहीं हर हर पीजे राम राजे जन नानक गुरु की अरदास सुन रहा हर पल हर

0: लीला राजन की रचना करया हुकुम फारा देश फरियो जीत फरियो सब देश दसान को बाज टोल मर्दान नगारे जीत फरियो सब देश दसान को बाज टोल मर्दान नगारे गुंजत बूंद विराज के सुंदर राज भंडारे पूज पवित्र पवान के कुपत कौन करे जात विचारे श्रीपत श्री भगवान पढ़े बिना श्रीपत श्री भगवान पढ़े बिना अंक को अंक के दाम चलाए
1: राज मिल सिख लारिया अग्नि मिल जा राज मिल सिख लारिया।

0: मन की चरण कमलाए जे लख स्त्रियां भोग करे नवखंड राज कमावे बिन सतगुर सुख न होई जीत करे सब देश दुखान को
1: बात तो

अंतर मन मेरे जास जपत जास जपत अखंड कीर्तन भोजन चूड़ा हर हर कीर्तन यह

0: दुख तेरा जिन नर नाम तिहार होता है तन दो दिन चिंता है
1: जिन नर नाम तिहार।

उसकी ताकि ताकियां वे कर जाए तो ब्रह्म ज्ञानी की कलम है तहु पाए के बाद जिनके करे विसरते इन्हों का मोह नहीं अंदर टुटना चक्का चिकी ताके से ताकियां ये बड़ी दुरूप गल है। इस करके भाई साहब कह रहे हैं।

तिन अमृत फल हर पार। इतना अंदर खोट नित खोट कमावे ओ जेहा बीजे यहाँ पर।

उत्तरे सगल विष्णुरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पर सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते भगत सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते भगत सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सतास तुम मात पिता हम कोई ना जाने तुम्हारा अंत क्या तुम अंत हो सकल से नगरी को

राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवें, सिमरौ तुमरा नाम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवां कार बारवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय, वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड्डा भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा, चरण कमल जाका मन रापै, सोग अगन तिस जन ना व्यापै, सागर तरिया साधु संगे, निरपौ नाम जपहु हर रंगे, पर तन दोख किस पाप न फेड़े, जम जंदार न आवै नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरण आई, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, सबना जी नानक उदरे प्रभ शरण आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम

0: कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन बरतर सब जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गए जमकाल महला पहला
1: वाइन केले नचन गुर पहर लाइन फेरन सिर

दीपा लोहा मंडला खंडा परवंडा अंड जेरे ज्योत पजा काणी सेत जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए के संभाले सबना जन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरी स्वास्थ्य तिस दीपाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग क्या टिका क्या तग।

पौड़ी सच्चा सहवे तू जन सचो सच वरताया जेसू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जन के हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया का है।

पहला पहला पड़पड़ गड्डी लदिए पड़पड़ परिये साथ पड़पड़ बेड़ी पाइये पड़पड़ गड्डिये का पढ़िए जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और होमे चखना चाक।

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसण हार कूड सोयना कूड रूपा कूड पहनण हार कूड काया कूड कपड़ कूड रूप अपार कूड मिया।

संभलिया। इनका रूप देख ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्रे जगत निहालिया। कसम छोड़ दूजा लगे डुबे सेवन जा रहा,

ध्यावादं चल पूजस बगल समादं मुख झूठ विभूखण सारंग त्रिपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलकल लाटंग धोती वस्त्र पाटंग।

माणसाने करे निवा चुरी गायन तन गलता तन कर ब्राह्मण पूरे ना दुना भी आवे ओई सार कूड़ी रात कूड़ा बपार कूर बोले करे आहार तरन तरन का डेरा दू नाने कूड़ रिया परपूर मते टिका तेर तो जी कखाई अब तुरी जग कसाई निर्वासर पैरों में परवान भले तन लै पूजे प्राण अपाख्या का कुटा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे हे अन साडा फिटे तन फिटे फिर करे मन रूठे चुली परे का नानक सच ते आई है सोच होवे ता

पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण बेया पंड होवे दोषी पंडो चलेरा पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मंदाया किया जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजाय पंडे वाजना को नानक पंडे वाहरा एको सच्चा सोए जित

पौड़ी अपे ही करना कियो करे अपे ही तैत हरिया देखा कि ताय अपना हर कच्चे पक्के सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिससे दीप प्राण है क्यों साहिब मना

इतिहास जदों अजे दुनिया ते नहीं सी, मनुख ने अजे इतिहास लिखना सिखिया नहीं सी, मनुख जौंदा उदों ही सी, घटनावां उदों ही वापरदियां सन, पर उन्हां घटनावां नूं किसे तरतीब विच किसे नियम विच लिया के नहीं लिखिया गया। इस करके असीं इतिहास तों पहलां दी तारीख नूं मिथिहास कहिंदे आं, जिस नूं अंग्रेजी वाले मैथोलॉजी कहिंदे ने। साडी मैथोलॉजी विच पुरातन सभ्यता विच जिक्र आउंदा है कि दुनिया दे विच समें समें अनुसार अवतार आए, जदों जदों भी जालमां ने जुल्म कीते तां उन्हां नूं उन्हां दे पापां दी सजा देण वास्ते निरंकार ने इस दुनिया ते अवतार भेजे, जिन्हां नूं असीं वक्खो वक्खरे नावां दे नाल याद करदे आं। प्रहलाद होया हरनाकस दा पुत्र, जुल्म करन वाले हरनाकस नूं सजा देण वास्ते नरसिंह अवतार आए ने। नर ते सिंह यानी मनुख ते शेर दी रलवी मिलवी सूरत, कच्छ अवतार, मच्छ, वरा, अनेका अवतार आए जो कि मनुखी जामे विच नहीं आए। मानदे आं वक्ती तौर ते किसे पापी नूं उस ते पापां दी सजा मिली होएगी, भावे नारायण कीड़ी बन के थम्मां ते तुरिया होएगा, पर इस दे नाल समुची मनुखता का कुछ नहीं समर सकिया, किसे नूं कोई अगवाई नहीं मिल सकी ते ना ही अगवाई कीती ही गई। एक मनुख वास्ते अजिहा होया, एक भगत वास्ते ऐसी घटना घटी। इस धरती दी धरती दे लोकां दी ब्रह्मांड दी पुकार सी कि हे काल पुरख, जदों तू नरसिंह बन के आउंदा है असीं तेरे नाल अपने दिल दी गल नहीं कर सकदे, जदों तू कीड़ी बन के आउंदा है तेरे नाल असीं अपनी सांझ नहीं पा सकदे पातशाह, तू इस दुनिया ते आ अपनियां शक्तियां ताकतां लैके आ, पर साडे वर्गा बन के आ, साडे विच रह, साडी बोली बोल, साडे दुख सुन, साडियां तकलीफां सुन, सानू अगवाई दे। धरती दी इह पुकार अकाल पुरख दे द्वार ते सुनी गई है। भांबर जुलम दे बड़े जद पृथ्वी ते सीना सेक नाल सड़ गया तारियां दा, जदो प्या परछावां आकाश उत्ते होरे धरते खुनी नजारियां दा, जदो मुगलां दी तेज तलवार कीता कतले आम सी रब दे प्यारियां दा, नानक रूप धार उदो अवतार आ गए बन के हौसला हौसले हार। संसार दी दर्दनाक अवस्था तक निरंकार ने खुद गुरु नानक देव जी महाराज दा रूप धारण करके इस सृष्टि ते अवतार लिया। गुरु पातशाह दे दुनिया ते आउण दे नाल कल्याण दे रस्ते खुल गए। अनेकां ही सज्जन ठग ते कौड़े राक्षस वर्गियां नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्धे रस्ते पाया। ऐसे मनुख जो दूजियां दे रस्तियां दे विच कंडे खिलारदे सन, इलाही बाणी दा उपदेश लैके दूजियां दे रस्तियां चों कंडे चुगण वाले बन गए ने, पर उपकार करन वाले बन गए ने।

खालसा अकाल पुरख की फौज, करते हो खालसा परमात्मा की मौज। सिंह ने पूछा कि कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा जावे जिस नाल मुगल हुकूमत नु दस दिता जावे कि सिंह अजे खत्म नहीं होए, सिंह का चढ़दियां कला दे विच ले। अपने उलिखे हुए व्यों दे अनुसार इन्हां सूरमियां ने नूर दीन दी सरां दे लगे अपना केसरी झंडा गड़ दिता। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई दा नारा लाया, ऐलान कर दिता कि अज तो खालसा राज कायम हो गए, ते हर लंघन वाले नू इसे टैक्स देके जाना पवेगा। सिंघा ने जिस तरह टैक्स भराया उस समय के दृश्य नू ढाडी जथा आदि की सेवा विच गए।

सूबेदार लाहौर जकरिया खान ने फौजदार जलालुद्दीन नु हुक्म दिता है कि तमाम फौजी दस्ते लेके इन्हां नु फड़ के साडे सामने जिंदा पेश करो। जलालुद्दीन सैकड़ियां दी गिनती दे विच मुगल सिपाही लेके मारो मार करदा होया नूरदीन दी सरां वल वध पिया। उधर सिंह सूरमे भी गैरी दी उड़ीक कर रहे सन। इधर सिंह शेरां दे कोल केवल डांगां ते तलवारां ते उधर जलालुद्दीन दी फौज तोपां ते गोलियां दे नाल बंदूकां दे नाल लैस। फौजदार जलालुद्दीन ने आके बोता सिंह जी नूं कहा कि यह बोता सिंह टाकरा करन दा हुण कोई फायदा नहीं होना, सियाण तो कम लै ते सरकार दी ईन मान लै। भाई बोता सिंह जी ने जवाब दिता, जलालुद्दीन असीं अपनी जान बचाण वास्ते नहीं सगों अपनी जान वारन दे वास्ते कम कीता है। असीं सोचिया कि थानू जालमां नूं भुल ना जावे कि सिंह सूरमे जुलम दा टाकरा करन दे लई हर वक्त तैयार वर तैयार ने, इन्हां नूं तुसीं कदे खत्म नहीं कर सकदे। हां जे तूं साडी बहादुरी देखनी चाहुंदा है तां अपनी फौज दे विचों चार चोणवे जवान साडे टाकरे ते भेज। जलालुद्दीन ने चार चोणवे सिपाही सिंघां दे टाकरे वास्ते भेजे ने। इधर सिंघां शेरां ने ऐसा हल्ला बोलिया कि पहले वार दे विच चारां नूं मुका दिता। उस तो बाद जलालुद्दीन ने शेर भेजे ने, उह वी बहुता चिर सिंघां दे अगे आ नहीं सके। फौजदार ने फिर जदों अठां नूं अगे वधन वास्ते हुक्म दिता तां सिपाहियां ने कहा कि यह फौजदार तू दो दो चार चार करके इदां ही सारी फौज दा काम करवा देना है। तां जलालुद्दीन ने सारी फौज नूं इकदम इकट्ठियां दोनों शेरां ते हल्ला बोलन दा हुक्म दे दिता। इधर दोवां सिंघां ने कंडा जोड़ लईआं ने, उधर मुगल सिपाही टुट के पै गए ने। इन्हे तलवार दे वारां दे नाल जिस तरह लोहे ते लोहा टुट रहा उस समय दे दृश्य नूं ढाडी जथाबंदी सेवा विच के

और प्यारी साथ संगत जी, एक सोचना है गड्डी नंबर 610 SEA इसकी लाइटा ऑन ने, कृपा करके जिन्हां दी भी गड्डी है वो ख्याल कर लें।

सैकड़े मुगल सिपाही ते दूजे पासे केवल दो सिंह सूरमे ने। इस लड़ाई दे विच सिंघां सूरमियां ने ऐसे जोर विखाए कि मुगलां दे सैकड़े सिपाही धरती ते डिगदे नजर आउण लगे ते सिंह सूरमे शरीर दे उत्ते अनेकां फट सहारदे होए अखीर शहादत दा जानती गए। In the first half of 18

अर्ज की, कोई मुसाफर अरा जांदा एक रमणीक टिकाना वेख के, जिथे पानी निर्मल जल का भरिया होया तालाब से, उस विच कमल फुल खिड़े सन, डड्डा मछलियां तैर रही सन, किनारे ते हरा हरा घास भी बिरछ बूटे सन। अजे ही रमणीक जगह देख के मुसाफर रुक गया, थोड़ी देर सा ले लवां, इहो जे टिकाने कोई हर थावे थोड़ो मिलते ने, जीवन विच ताजगी दे दिंदे ने इहो जे टिकाने। रुक गया, थकावट उतारी, अगे तुर गया। अर्ज कीती सी, कुछ दिनों बाद वापस परत रहा सी, फिर चेता आयो, ख्याल आया तो इससे मेरे राह विच कोई जीवन विच खेड़ा लियाउण वाला, ताजगी देन वाला कोई टिकाना है, जिथे पुज के थकावट खत्म हो जाती, जीवन विच नेहो नवेला हो जाता है, अपने प्रीतम से लाग रहे वाला नेहो नवेला हो जाता है। फिर देख लवो, फिर मान लव ऐसे टिकाने का सुख, जदों उस टिकाने ते पुजिया की देखियो हुण तालाब विच पानी कोई नहीं, पानी सुक गया, ते पानी दे सुकन नाल जड़ियां मछलां ते मछलियां ते डड्डा उस पानी विच तरदियां सन, कलोलां करदियां सन, ओ मर गईयां, ते उन्हां दी मौत कारण हुण बदबू आउंदी है इस तालाब विचों, ते तालाब दी थल्ले वाली धरती दी मिट्टी काली हो गई है। तालाबां दी छप्पड़ां दी थल्ले वाली मिट्टी कदी देखो ना काली हुंदी है, थां थां फट गई, त्रेड़ा पै गई, दुआले दा कहा सुक गया, सारियां रौनकां खत्म हो गई। सवाल की तुस, मन विच ख्याल आया, सवाल की तुस, ए तालाब मैं कभी तेरियां रौनकां वेखियां नहीं, मैं कभी तेरा साथ मान के खुशी प्रतीत की थी, पर की कारण है आज तेरी ये हालत किवें हो गई, तेरी देहुरी दी भाव तेरी देह दी मिट्टी सुक गई, काली हो गई, तेरे कमल फुल जल गए, आखिर ये सुकेवा किस तपत नाल पैदा होया, तेरी ये बर्बादी का दृश्य सीन जो मैं आज देख रहा, मैं इनका कारण पूछना चाहना। एक सवाल की तुस, ते उस तालाब ने पब्बर ने जवाब दिता, उस सवाल के जवाब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित है। गुरु कहते हैं

रब नाल विछड़ गया ते मनुखा दे सारे सुखी होना चाहते हैं। हालांकि गुरु ने बार बार एक चेतावनी दी, कहने लगे जिंदे कोलो अपने अंदर भी शांति ढूंढन जाना है, जरा उनके कोलो कुछ तेरे अंदर शांति है। हर बिन परम को लाने आंदा, जा पे जाओ आप छुटकावन। जिंदे कोल गया आपा छुटकान वास्ते, ताकि माया की फाई तो बच जाए, जरा उनके नेड़े होके तो देख वो बचिया हुआ। अभी ध्यान दो जी, अज के संसार की कहानी है। इस लाइन विच मनुख गुरु नू रब नू शब्द गुरु नू त्याग के मनुख रूप विच देहधारी गुरुआं दे दुआले पिया फिरदा, इस ख्याल नाल खरे मैनू शांति मिल जाएगी। भलिया जरा उन्हें डेरिया से जाके तो वेख उ शांति है, जे उन्हें डेरिया से भी ईरखा चल रही हो, एक दूजे नू, एक संत दूजे नू देखना नहीं चाहता, गोलियां चल दी ने, केस चल रहे ने। इसलिए केवल गद्दियां की पकड़ नहीं, केवल सिंघासन की पकड़ नहीं, केवल इमारतों के डेरिया की पकड़ ली, जेडे आप इस तरह के ग्रिप विच ने भला तेन कि छुड़ा देंगे। गुरु कहते ने बाणी कहने जा पै जाओ आप छुटकावन, ते बंदे बहुत फंदाओ ते मेरे नालों ज्यादा वड्डिया फाइया फसे हुए ने, पर तेरी हालत यह है जग जीवन पुरख त्याग के मन संदियास, उनका नतीजा यह हो रहा है

नहीं का तो भाव चंगा, कोई चंगा काम मना करता रहने चली गई, जो तो समा तो लंघ गया, बाकी की रह जाता पछतावा।

से एक अरदास कि हे मालिक तेरे तो विछड़ के केवल तपत विच के रह गया, तेरे को टूट के तपत ने अग ने जला दिता है, अथार तपंदा तिस लगे हर ना ना जिन्ना पास, तेरे को विछड़ के तपत दे घेरे आके जल गए। ते हुण एक अरदास है,